0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो यूं ये करे वेर क्वारो
0: बीमार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: Yeah. Yeah.

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम चुन के रे वेर क्वारो
0: पियम चुन के रे वेर क्वारो
1: बीमार मैं पाचू
0: बीमार मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डोटेला
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम चुन के रे वेर क्वारो
0: पियम चुन के रे वेर क्वारो
1: बीमार मैं पाचू
0: बीमार मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डोटेला
1: ETI Winyo or Radio.